0: लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio।
2: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: बदले फूफा के भतीजे लोरी लोरी लोरी ए मई लोरी अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां ये मर्द भी कर सकते हैं
1: मर्द जिंदाबाद

जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: Nika Gold. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
1: Atif Aslam live in the UK.
0: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
1: Book your tickets now at AXS.
0: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later, all ATOL protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207 132 1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
4: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

बात जैसी हो न हो किस्मत की वो हेती, न टिंगनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी।

नाजो की गपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ के पाली जो जहां से वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर एक साइकिल वाली

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो,

सो मैं विसर न जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हाँ हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
7: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
6: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
7: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
11: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo, only like a gold.

0: जायका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद.
7: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
6: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
8: दिस ईद उल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली, लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी वेयर देयर इज Always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
9: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Gold Breakfast with Kajal.
12: Like a gold.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन की दुनिया में। बुधवार वर्ष 2026 के मई महीने की 27 तारीख और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का भाई 10:05 हुआ चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। और हमारे बहुत सारे श्रोता चाहते हैं कि भाई आज ईद मुबारकबादी का पैगाम उनके नाम हो जाए। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया तो भाई काजल का प्रोग्राम मिस कर गए हैं आप। काजल जब से लौट के आई है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए कॉफ़ी लौट आई है। कॉफ़ी का कप आ जाता है। मौसम खूबसूरत है, बड़ा ही हसीन मुहूर्त है। और भाई ईद का अगर मौका है तो फिर ईदी की ज़रूरत है। जहाँ की ईद हुई देखकर फलक का चांद, आसमान पे चांद नज़र तो आएगा तो ईद हम मनाएंगे। उठा के हाथ खुदा से तुझी को मांगेंगे और मुराद दिल की सभी आज उनसे पाएंगे। हम आज दिल के उन्हें तोहफे में पेश कर देंगे, वो ईदी मांगने को हाथ जब बढ़ाएंगे। ये रस्म जिसने बनाई है शुक्रिया उसका। मिलेंगे ईद उसे आज गले हम लगाएंगे। वो फूल जूड़े में गूंथेंगे आज मेरे लिए, वो हाथ मेहंदी से मेरे लिए सजाएंगे। नजर से आज करेंगे सलाम हम उनको, वो चूड़ियों से भरे हाथ जब उठाएंगे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Eid Mubarak from Leica Radio Network.
0: जहाँ की ईद हुई देखकर फलक का चांद नजर तो आएगा तो ईद हम मनाएंगे। उठा के हाथ खुदा से तुम्ही को मांगेंगे और मुरादे दिल की सभी आज उससे पाएंगे। नजर से आज करेंगे सलाम हम उनको, लाल चूड़ियों से भरा हाथ जब वो उठाएंगे, खनकाएंगे चूड़ियों।

0: लीजिए साहब, आगाज हो गया है मनोरंजन प्रोग्राम का। दो गीत हमने परोसे बैक टू बैक संगीत के तहत। आपने पहला गीत सुना फिल्म जीना मरना तेरे संग से, एंड सॉन्ग वाज तेरे लिए लाया हूँ मैं लाल लाल चूड़ियाँ। ईद का त्यौहार है और भाई लेन देन उपहार हैं तो उनमें चूड़ियाँ भी आती हैं, बिंदी भी आती है, सुर्खी भी आती है और भी बहुत सारी चीज़ें आती है श्रृंगार की। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए क्या है छोड़िए जी, क्या रखा है सच्ची बातों में। मिले जो कड़ी कड़ी, ये दूसरा गीत था कस्मे वादे फिल्म से और ये गीत गा रहे थे रफ़ी साहब, किशोरदा और आशा भोसले। तो भाई इस तरह से हुई शुरुआत मनोरंजन कार्यक्रम की और अब आपको हम पाउंड का रेट बताते हैं। हाँ, इसी मोड़ पर तो हम आपको फाइनेंशियल जगत में ले जाते हैं, क्या भाव चल रहा है पाउंड का भारतीय रुपये के खिलाफ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK and State Bank of India UK. At this moment, they are offering 128.15 इंडियन रुपीज़ फॉर वन पाउंड। और साहब इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है भाई, वो जून महीने के एंड तक अगर आप पैसे भिजवाते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और ये प्रोग्राम दोपहर बाद 1 बजे तक मैं लेकर के आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। भाई यहाँ ब्रिटेन में वो हीट वेव कह रहे हैं लोग चल रही है, हालांकि इतनी गर्मी की हम लोग तो आदि हैं, उस जगह से आए जहाँ इससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है। आज वहाँ बांदा एक जगह है भारत में, वहाँ पर टेम्परेचर 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तो अभी 30 से नीचे ही, 30 से ऊपर भी गया है 34-35 तक, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक भाई 49 मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें भी लोग बिलबिला जाते हैं और कुछ लोग पानी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और बड़े दुख की बात है कि स्विमिंग करते हुए 5 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें 4 टीनएजर्स, एक 12 साल का बच्चा भी था, एंड ए मैन इन हिज 60s ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग द लेटेस्ट हॉट वेदर। भाई गर्मी का मौसम ज़रूर है, लेकिन गर्मी से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन ऐसा रिस्क लेने से कि आप अपने जीवन को ख़तरे में डालें बचिएगा। और ये बड़ी दुखदायी खबर है गर्मी के मौसम से। आज के दिन के साथ जुड़ने वाले और समाचार कौन कौन से हैं, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने गैंग रेप और बच्चे के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। यह अलग से केस है, दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को आज बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से थोड़ी आंशिक राहत मिली है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आईपीसी और पोस्को कानून के तहत गैंग रेप और बच्चे के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न सेक्सुअल टॉर्चर के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि नाबालिग से रेप के मामले में उनकी सजा बरकरार रखी गई है, जिसमें उनकी उम्र कैद की सजा जारी रहेगी। फिलहाल आसाराम टेम्परेरी जमानत पर बाहर हैं और सोमवार को ही उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि अप्रैल 1941 में पाकिस्तान के सिंध इलाके के बेरानी गांव में पैदा हुए थे आसाराम, और उनका असली नाम असूम अल हरपलानी है। युगांडा से बेंगलुरु आई एक महिला में इबोला के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन बुधवार को यानी आज महिला की सभी जांच रिपोर्ट्स नेगेटिव पाई गई हैं। कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर रजनी एम ने बताया है कि हमने सभी 4 सीरोटाइप की जांच की, हमें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिपोर्ट के आधार पर उन्हें चेक किया, ये रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राजदूत पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान पर गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने आज कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है। एम्बेसडर पर्वत नैनी ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि आज़ाद भारत की शुरुआत ही पाकिस्तान के सीमा पार हमलों से हुई थी, जिनका उद्देश्य भारतीय इलाकों पर कब्जा करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कई युद्ध छेड़े और लगातार सीमा पार टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और शांति सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। पश्चिम बंगाल की पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी फॉर्मर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणियों के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के नेता और एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में ये शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मी के कारण देशवासियों से अपील की है। भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जिंदगी में गर्मी से होने वाली कई मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें जरूर बरतें। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि गर्मी तो झेल लेंगे लेकिन इस महंगाई से जनता के पसीने छूट रहे हैं, इसका क्या करें। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार SIR करने का अधिकार है। इंटरनेशनल खबरों में चीन ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में पाकिस्तान और दूसरे देशों की मध्यस्थता का वो समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल मंगलवार को यूनाइटेड नेशंस में प्रेस से कहा कि मौजूदा हालात में सबसे अहम बात अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत है क्योंकि यही एक मुख्य पक्ष है। केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर आज बुधवार को सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने छापा मारा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। कांग्रेस ने CBSE के मार्केट पोर्टल पर सवाल उठाए हैं, कहा कि ये छात्रों के साथ धोखा है। कांग्रेस पार्टी ने कल मंगलवार को एक्स हैंडल पर एक न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एक हैकर ने एक TV चैनल CBSE के मार्केटिंग पोर्टल को हैक किए जाने की बात कही है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग में पाकिस्तान का बिचौलिया बनना परेशानी भरा है। लिंडसे ग्राहम अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ही सीनेटर हैं। लिंडसे ग्राहम ने कल मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये काफ़ी समय से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का बिचौलिया बनना, मध्यस्थ बनना मुश्किल और परेशानी भरा है। उनका इसराइल के प्रति विरोध बहुत पुराना है, इसलिए वो इसराइल के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा कि ये बात भी साफ है कि ईरान के फौजी जहाज पाकिस्तान के एयरबेस पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े नेताओं को इसराइल के खिलाफ पुरानी बयानबाजी करने की आदत है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालिफायर एक में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के बाद टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या का रिएक्शन आया है। विजय माल्या ने कल रात एक मैसेज पोस्ट किया, लिखा कि आज रात धर्मशाला में शानदार जीत के लिए RCB को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बेंगलुरु के शेरों की तरह जोर से दहाड़े और डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर IPL के फाइनल में पहुंच गए। भाई एक और मैच आज खेला जाएगा और उसके बाद भाई फाइनल तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं 31 मई को दो कौन सी टीमें आमने सामने होंगी। IPL की रिपोर्ट देते हुए हम आपको बताएंगे। और एक खबर यह कि इसराइल की ओर से साउथ और पूर्वी लेबनान में किए गए हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि ताज़ा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये थी आज की खास खबरें। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और Southall Travel वालों का एक संदेश है भाई, नोट कर लीजिए. They say that make this summer memorable with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holidays deals that include flights, hotels and atoll protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Southall Travel को विजिट कीजिए या उनका फोन नंबर मिलाइए 0208-574-8410.
1: Brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Like a gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
8: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना. ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ. 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. किट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
11: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Our Radio.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है। कहीं भी घूम कर आइए, फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपकी मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
14: ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल।
15: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी।
15: ट्रेवल विद योर फैमिली एंड विटनेस दिस डिवाइन ओकेजन अलोंग विद द आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज एंड अ पेरिस सिटी टूर।
16: डिपार्चर 5th of September। कॉल नाउ ऑन 02037736333।
15: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा।
17: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स।
18: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
17: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
19: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: बंद कर रेडियो।
1: नहीं करू कीधु ने।
0: अरे कहू छू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
1: तमारे जे जोऊ होते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
0: एटले
1: शू? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा लाइक का गोल्ड रेडियो पर स्कोर के आंकड़े बताए जाएंगे।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation.
3: इन दुबई।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
8: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
9: Relax, I've booked the Uber already.
8: But how? My roaming isn't even working yet.
9: I switched to Simsy before we left London.
8: Simsy? Since when are you the tech expert?
9: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
12: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
15: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
18: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
19: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
20: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: मिलन फिल्म का ये गीत हमें लेकर के चलेगा 11 बजे की खबरों तक।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहनों भाइयों, अब इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो चुके हैं, मनोरंजन के दूसरे घंटे का आगाज हम करते हैं चिंतन से। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज की चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं एक बार फिर से भाई हमारे परम मित्र डॉक्टर जितेंद्र बख्शी का भेजा आलेख। याद दिला रहे हैं कि रवि जी, आज भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि से अभिप्राय भी बरसी है, ईद भी है आज। हम अपने श्रोताओं को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन भाई याद करते हैं भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को, उनकी ज़िंदगी की कुछ बातें। वैसे तो आपको बता दें कि भाई पॉलिटिक्स में जो होती हैं उनके समर्थक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन कुछ एक बातें हर लीडर में ऐसी होती हैं कि जो उन्हें लीडर बनाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विषय में हमें एक आलेख संदीप सोनी ने भी भिजवाया। संदीप कहते हैं कि मेरी ओर से भी आज पंडित जी को श्रद्धांजलि समर्पित कीजिएगा। भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री को आज़ादी के बाद ये जो ताज मिला, प्राइम मिनिस्टर का जो पद मिला, ये कांटों से भरा था। बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी परेशानियाँ साथ आई थी। धीरे धीरे देश संभला, अपने पाँव पर खड़ा होने लगा। आप जानते ही हैं कि आज़ादी मिलते ही पड़ोसी देश से आक्रमण हो गया। कुछ समय बाद फिर चीन ने जंग छेड़ी तो भारत तो तैयार नहीं था। शांति की बातें हुआ करती थी, पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित करते थे नेहरू जी। तो ऐसे में अचानक एहसास हुआ कि भाई भारत को शक्ति चाहिए, फौज चाहिए, हथियार चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मूल भावना थी, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, उन पर नेहरू जी टिके हुए थे। 27 मई आज का दिन पंडित जी की याद दिलाता है। वैसे भाई आज कमला एकादशी का विशेष महत्व भी है, आज ये तिथि भी है। लेकिन 1964 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। वे आधुनिक भारत के इतिहास में इतिहास पुरुष माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज ही के दिन 27 मई को 1703 में रूस के प्रसिद्ध शहर सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई थी। और भी कई बातें आज के दिन के साथ जुड़ी हैं, लेकिन पंडित जी की पुण्यतिथि। मुझे याद है उन दिनों भाई हमारे एरिया में रेडियो किसी किसी घर में होता था, और जब वहाँ से ये खबर प्रसारित हुई और सारे संगीत के कार्यक्रम रद्द हो गए, रेडियो पर सिर्फ एक सैड ट्यून बज रही थी और पंडित जी के बारे में बताया जा रहा था कि पंडित नेहरू नहीं रहे। लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी बातें, उनके संवाद और उनके काम लोग आज श्रद्धा से याद कर रहे हैं। उनकी एक बात जो बहुत प्रेरक रही है भाई चिंतन की, जो शोभा पहले ही बन चुकी है, वो बात है आराम हराम है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं इस देश में आराम परस्त होते हैं, कहते हैं कि जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो काम क्यों करें, इतने पागल नहीं हैं हम। लेकिन कुछ लोग हैं कि भाई पैसे मिल भी रहे हो तो भी काम करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, और समाज सेवा के कामों की जिम्मेदारी ले लेंगे। अब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए 18 घंटे काम करते थे। आखिर दिनों में तो डॉक्टर्स ने उन्हें वार्निंग दी, पंडित जी संभल जाइए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जिम्मेदारियां इतनी,
एक बार बच्चों ने नेहरू जी से पूछा था कि आप हमेशा अपने कोट पर गुलाब क्यों लगाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, बच्चे और फूल दोनों देश का भविष्य हैं, इन्हें प्रेम और संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, देखभाल चाहिए। इसीलिए भाई पंडित जी चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे बच्चों के लिए। लेकिन सबसे उनका जो प्रेरक सेंटेंस, जो बात है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से है। वो लाइनें जिन्हें वो लिख करके अपने तकिए के नीचे रखते थे, सोते थे पढ़ के, उठते थे तो उठते ही वो पढ़ते थे। जानते वो लाइनें क्या थी? द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कि जिंदगी में आकर्षण है, विश्राम है और मोह बहुत है, लेकिन अभी मुझे अपने कर्तव्य को निभाना है, वचन पूरे करने हैं, बिफोर आई गो टू स्लीप। या स्लीप से मतलब है बिफोर आई स्लीप फॉर एवर, बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड आई हैव टू कंप्लीट लॉट ऑफ जॉब्स, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू परफॉर्म। और बहनों भाइयों, 27 मई 1964 का वो दिन था कि नेहरू जी आखिरी सांस तक काम तो करते ही रहे, पर डॉक्टरों की वार्निंग जो है वो सच साबित हुई। पंडित जी ने आखिरी सांस ली, लेकिन अपने पैगाम में, अपने संदेश में वो आज भी जिंदा हैं। कह रहे हैं, आराम है हराम। सबसे बढ़िया तरीका है स्वस्थ रहने का, काम करते रहिए। जानती है वो जो ईसीजी की लाइनें होती है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो जिंदगी की निशानी है। अगर वो एकदम सपाट सीधी लाइन में हो तो वो मौत की कहानी लिखती है। चलना ही जिंदगी है, चलते रहो सुबह शाम।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भाई हमारे श्रोताओं की ओर से श्रद्धांजलि स्वरूप बता दें आपको कि ये चिंतन पेश किया गया। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है। 27 मई 1964 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बहुत सारे काम उन्होंने किए, पर जो काम अधूरे रह गए बाद में आने वाले नेताओं ने उनसे प्रेरित होकर के उस दिशा में कदम बढ़ाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका नारा था आराम हराम है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं बिफोर आई गो टू स्लीप। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें डॉक्टर जितेंद्र बख्शी और हमारे मित्र संदीप सोनी ने भिजवाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो गीत हमने आपको सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म अपना घर। प्रेम धवन के बोल थे और संगीत था महान संगीतकार रवि का। काफी पुरानी फिल्म रही होगी अपना घर। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथी गा रहे थे। उस जमाने में भाई शायद प्रेमनाथ हीरो होते थे, प्रेमनाथ, श्यामा, नंदा, दीज वर द आर्टिस्ट वर्क्ड इन दिस फिल्म। आज के चिंतन की शोभा बना गीत आराम है हराम। तो भाई कुछ ना कुछ करते रहिए, हिलते डुलते रहिए, थोड़ा बहुत चलते रहिए। स्वस्थ रहना है तो, मस्त रहना है तो, तंदुरुस्त रहना है तो, जबरदस्त रहना है तो आराम है हराम। यह था आज का विचार, आज का चिंतन। और अब याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए लौटते हैं अब अपने मूल रंग की ओर, मनोरंजन। पर उससे पहले फाइनेंशियल जगत पे नजर डालें भाई, पाउंड रुपए के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. इस समय जो भाई वो पाउंड का मूल्य दे रहे हैं रुपए में, भारतीय रुपए में, तो नोट कर लीजिए। Your one pound in British sterling can get you up to 128.3 rupees, 128 rupees aur 30 paise. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of the June and be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. नोट कर लीजिए। पर जून महीने के अंदर भाई, जो जून समाप्त होने से पहले पहले ये ट्रांजेक्शन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, रिमेंबर TNC अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है
4: Like a Gold.
3: Like a Gold.
5: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.

0: खबर किसको कि कल क्या हो। अरे ये तो दिन की है जिंदगी।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: से
1: पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है तो नाम तेरा लेके कह दूं कि तीज त्योहार जैसी होती है, ईद की बहार जैसी होती है। भाई ईद मुबारक हमारे सभी श्रोताओं को।
2: Mica Radio Network wishes you Eid Mubarak.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट derivalley.net।
1: और भाई लोग कहते हैं कि ईद तो मीठे मीठे सपनों के साथ होती है, यानी अपनों के साथ होती है। अपने पास ना हो तो दिल भला कैसे उदास ना हो। देता है भला कोई सजा ईद के दिन भी, वो शौक मुझसे दूर रहा ईद के दिन भी। ऐ जाने जहां हमसे खफा ईद के दिन भी, शिकवा था कोई आपको क्या ईद के दिन भी। इस रोज तो मिट जाती है हर एक शिकायत, और आप हैं कि हमसे गिला ईद के दिन भी।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a extra podcast update.
4: लाइका एक्स्ट्रा पर भाई हमारा नया एपिसोड आ चुका है और टाइटल है उसका डोमेस्टिक वॉयलेंस। दीप राजा होस्ट कर रहे हैं। देखिए जो डोमेस्टिक जो वॉयलेंस है वो भाई कई तरह की होती है। कई बार जो सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस ही नहीं मानसिक वॉयलेंस, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया जाए कि जीना मुश्किल हो जाए, वो भी एक वॉयलेंस है। कभी शब्दों के बाण जो है वो चुभते हैं। तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है इस एपिसोड में। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। आज भाई कुछ और नए भी एपिसोड जो है वो शूट होने वाले हैं, तो आप देखते रहिएगा लाइका एक्स्ट्रा पर हमारे ये ज़बरदस्त एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स।
3: लाइका एक्स्ट्रा Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Leica Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000. £1,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LEICA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Travel in style ka vaada hai.
13: Kahin bhi ghoom kar aaiye.
14: Flights aur holidays ki best prices ke liye
13: hamare paas aaiye.
14: Apne early bird discount ke liye number milaiye 0208-954-0077.
13: That's 0208-954-0077. आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
15: ट्रैवल इन स्टाइल,
16: ट्रैवल इन स्टाइल,
15: ट्रैवल इन स्टाइल।
17: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति, भक्त
15: શાંતિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના. મંત્રા હોલિડેઝ, કોલ કરો 02037736333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
16: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
18: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
16: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
18: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
19: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन.
20: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
21: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: अनुराधा पौडवाल और सखियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना भाई. अनुराधा जी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक. और अब अगला गीत सुनवाने से पहले कुछ शरारत सूझ रही है हमें.
3: ए मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार.
2: सात दिनों में फंसना, अरे सॉरी हंसना चाहिए कम से कम 700 बार. लेकिन भाई फंसना भी हो जाता है कभी हंसते हंसते. अब देखिए प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी का ये बड़ा प्यार था दोनों में. पति नौकरी के लिए बाहर जाने लगा तो सुबकते हुए पत्नी ने कहा,
4: देखो जी पहली बार इतनी दूर जा रहे हो, जल्दी आना.
2: पति ने कहा, तू घबराती क्यों है, रोज का एक पत्र तुम्हें लिखा करूंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे पास ही हूं. तो साहब रोज की एक चिट्ठी आने लगी. कभी एक आध दिन मिस हो जाता तो पत्नी बहुत उदास होती. डाकिये से कहती,
4: हे डाक बाबू चिट्ठी लाया कि ना?
2: आज चिट्ठी नहीं है.
4: अरे लाओ ना, अगर वो ना भेजे तो आप खुद से लिख रहा हो.
2: अब डाकिये ने भाई इतना तो कर ही सकता था. वो पति की चिट्ठी जिस दिन नहीं आती वो अपने आप पास से लिख लाता. और साहब चिट्ठी रेगुलर मिलती रही, पत्नी को खुश होती रही और डाकिये से बड़ी हंसी की मुस्कुरा के बात करती थी. जब पति भाई सालों बाद लौट के आया तो पता चला कि वो पेन जो चिट्ठी लिखने वाला था वो चाकू बन गया और डाकिया डाकू बन गया.
4: हे डाक बाबू पतिया लायक है नहीं पाती

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए साहब, अब एक दो संदेश हैं आपके लिए। क्या है संदेश भाई, क्या पैगाम है आपके नाम है कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम जिनके साथ भाई लाइका रेडियो नेटवर्क करीब से जुड़ा है, उनमें एक तो है हमारे राम। लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द शो हमारे राम, स्टारिंग सुप्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा। बड़ी गजब की हिंदी बोलते हैं और भाई रावण के रूप में आ रहे हैं वो। रावण भी अच्छी हिंदी बोलता था, संस्कृत भी बोलता था। और भाई राहुल आर बुचर इज परफॉर्मिंग एज राम। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो। हैमरस्मिथ में है, बढ़िया थिएटर है। तो भाई याद रखिएगा ये बात।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम। खेलें कूदें आराम करें और कोई बात ना पूछेंगे हम। सोशल सिक्योरिटी है ना, शान से जिएंगे।

0: दिल को किसी के क्या तोड़ेंगे, फूल हमने तोड़ा।
1: अरे पाया जिसे दिलों का दुश्मन, उसे कभी ना छोड़ा।

0: सूखी सुखेरी खाते हैं भाई, मटर पनीर खाते हैं। मुझे याद आई ये भाई टर्म जो है हम अपने ऑर्केस्ट्रा के लिए इस्तेमाल करते थे, वो हमारे कलाकार जब हम उन्हें बुक करते ना, हम दूर दूर शो करने जाते थे तो गर्ल्स बॉयज म्यूजिशियंस सिंगर सबको बुक करते, साउंडमैन भी, तो सब पूछते थे पेमेंट कैसी है, तो इशारे इशारों में बताते हैं भाई उनको। वो पूछते थे क्या मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा कि दाल मखनी मिलेगी, क्या मिलेगा। बड़ा अजीब था साहब, मटर पनीर या दाल मखनी। अगर कहते मटर पनीर तो खुशी खुशी चलते थे, दाल मखनी मिलता वो भी ठीक था, लेकिन अगर कहते भाई सिंपल आज तो बस यूँ समझ लो कि रोटी रोटी पे है, कुछ नहीं है साथ में। चलिए आपको ये साउथ हॉल ट्रेवल वालों का संदेश सुनवाते हैं।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और साउथ हॉल ट्रेवल वालों का संदेश है कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एटोल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों से भी ज़्यादा का विश्वास जो उन्होंने लोगों में जगाया है, कमाया है भाई, और इसके अलावा ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी उन्होंने पाया है, जीता है, तो उन्हें संपर्क कीजिए। फोन देम ऑन 0208-574-8410।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Three heroes, one mission, to hijack snacks. Introducing new corn protein bites.
3: Wait, are we the heroes?
4: Of course we're the heroes.
2: These snacks are high in protein and ready to eat.
3: Why are you doing the serious voice?
4: Yeah, why are you doing the serious voice?
5: I was trying to make it cooler.
2: Find new corn protein bite snack bags in supermarkets nationwide. Corn, so tasty. Why choose the alternative?
6: ये है लाइका गोल्ड
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Visit travelhubworld.com.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
11: T's and C's are apply.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ। 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
14: Legend, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. For iTag at Unit 123 South Bridge Way, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
15: be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
18: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
19: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
17: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
18: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
20: Feel the fun. Play Ojo.
21: 18 plus, gamble aware.
1: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
22: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: नैना शाह संदेश भेज रही हैं भाई, थैंक यू नैना। इसके अलावा ये हमारे नॉर्थ होल्ट वाले प्रकाश जी रोटला भेज रहे हैं, बाजरे नो रोटला तवे पे रखा है फूल के, इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई, क्या करें, खा नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। मने बाजरे नो रोटला बहुत गमे छे, लेकिन भेजने वाले सिर्फ पिक्चर भेजते हैं, शर्म करो भाई। ये वो हमारी नैना शाह कहती है कि हम पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हाँ, तो पुरुषोत्तम मास में तो ब्राह्मण को बाजरे नो रोटला खड़ावे ना तो बहु पुण्य लागे छे। तो कहती मैं पूरे महीने उपवास रख रही हूँ और आप सबको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आज जो एकादशी है ना, पद्मा एकादशी, ये तो 3 साल बाद आती है, तो इसकी भी बधाई दे दीजिए, शुभकामना दे दीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि हम सबके घरों में सुख शांति निवास करें।

0: और पद्मा एकादशी के दिन भी किसी का जन्मदिन है आज। आज 27 मई आपको बता दें कि प्रसिद्ध क्रिकेटर रवि शास्त्री आज ही के दिन जन्मे थे। रवि शास्त्री, he was born in 1965 in Bombay, मुंबई। और 1957 में आज ही के दिन जन्मे थे नागपुर में नितिन गडकरी। बड़े डायनेमिक लीडर हैं, आपको बताऊं भाई। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान उससे लंबी बातचीत हुई थी, यहाँ बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और इंटरव्यू के आखिर में चाय पर बैठे तो कहने लगे, रवि जी आपको तो बीजेपी में होना चाहिए। मैंने कहा हम सब में हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के लीडर्स से हमारी मुलाकात होती है, सबसे बात होती है, सबको इंटरव्यू करते हैं। ना फिर भी है, आप किन के साथ हैं? हमने कहा हम भारत के साथ। लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी, नितिन गडकरी साहब आज जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नितिन जी। भारत में सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, जूल कैरिज वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें भाई, सब नितिन गडकरी का कमाल है।
1: Track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio Network wishes you Eid Mubarak. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Oh, sahab. रेट्स मैं बता देता हूँ करेंसी के। आप पैसे भिजवाना चाहें अपनों को तो लेम्फाई के रेट से एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.76 इंडियन रुपीस, 374.29 पाकिस्तानी रुपीस। श्रीलंकन रुपए दे रहे हैं 442.37, बांग्लादेशी टके 164.95 एंड अफगानी 84.04।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And let me speak about gold. भाई आज तो gold के ऊपर बहुत सारी बातें होनी हैं। Well, today gold rate जो थोड़ा नीचे आया है, ऐसा लगता है कि ढलान की तरफ, किसे क्या कहते हैं उसको सराफा भाषा में, कि सोने की कीमतें लुढ़की। कितनी लुढ़की? बहुत ज़्यादा नहीं। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 106.44 पाउंड्स पर ग्राम।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होना है टाटा आईपीएल 2026 का। ये मैच आज का जो 72वां मैच होगा, 74 खेले जाने, 2 मैच और बाकी हैं, और भाई आखिरी वाला तो फाइनल है। लेकिन आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स में भाई ओ वैभव सूर्यवंशी को देखने का मौका मिलेगा। और क्या वो रिकॉर्ड बना पाएंगे, पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, देखते हैं भाई। बैटिंग उनकी देखने वाली होती है। तो मैच दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा और स्कोर के आंकड़े हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। सुनते रहिएगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you. South or travel at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
8: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
15: चारू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र।
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
17: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गो।
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें

0: You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
1: it could be you.
0: Yeah, what he said. Lotto. From the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और लीजिए साहब, रवि शर्मा के चलने का समय हो गया है। इससे पहले कि काले बालों में तार चांदी के झिल मिलाने लगे हैं और इससे पहले कि पास की चीजें दूर की चीजें नजर आने लगे, लड़कियों की बजाय जब तुझको बेटा रवि शर्मा बूढ़ियां देखकर मुस्कुराने लगे और बच्चे माशूक की गली के सब तुझको मामा कह के बुलाने लगे, निकल ले। अबे निकल ले, पतली गली से निकल ले। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
4: ऊपर से मैं सख्त हूं, अंदर से नरम हूं। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गरम हूँ। अरे बाप रे बाप, हा हा हा हा हा, डर गया ना।

जाते हैं और बता दें आपको कि आज सनी एंड जेंटल ब्रीज है एंड टुडे इज गोइंग टू बी 26 डिग्री सेल्सियस एंड लो विल बी 14 एंड इन लेस्टर कैसा मौसम है, लेस्टर में भी सनी एंड मॉडरेट ब्रीज 23 मैक्स एंड लो विल बी 11 डिग्री सेल्सियस।

0: Bali Brahmbhatt.
1: दिस इज सरिता सबरवाल सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट एंड मैं आपका साथ निभाऊंगी टिल 4 o'clock और इस दौरान अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन होगा। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बैक टू बैक दो खूबसूरत गीतों के साथ। आइए सुनते हैं ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: आज के प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। ब्यूटीफुल गाना आपने एक नहीं बल्कि दो दो सुने। इस गीत में आवाज़ शामिल थी सुरेश वाडकर की, प्रेम रोग से चुना था मैंने इस गीत को। 1982 में ये फिल्म आई थी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एंड आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया हैना के गीत के साथ, 1991 की फिल्म थी, आपने ज़रूर देखी होगी। ज़ेबा बख्तियार एंड ऋषि कपूर थे इस फिल्म में एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। आई होप यू इन्जॉयड बोथ द सॉन्ग्स। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं। अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, खैरियत से रहें। और आज मैं आप सभी को ईद मुबारक भी कहना चाहूँगी, मेरे वो साथी जो बड़े प्यार से ईद मना रहे हैं। ईद मुबारक टू यू एंड टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स एंड जिन्हें भी आप जानते हैं, जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 128 rupees and 25 paisas. Agar aap aaj paise transfer karayenge तो आपको इतना रेट मिल सकता है, पर हो सकता है कि इससे कम भी मिले। इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: Leica Radio Network wishes you Eid Mubarak. Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: जी हाँ, टेस्टी ट्रैक आ रहा है. टेस्टी सारे गाने बहुत टेस्टी होते हैं, सारे अच्छे लगते हैं. थैंक यू सो मच. बड़े सारे मैसेजेस मेरे सामने हैं. सहर, थैंक यू. मितुल पटेल, थैंक यू. यस, देयर इज़ सम टेक्निकल इशू विच वी आर सॉर्टिंग इट आउट. थैंक यू. यू डोंट नोटिस. वाओ, जगदीश जी बुशी में आप हैं. विजय गुदरी सटन में आप. भरत गंगाराम जी, नाजिया शकील, उल्लास इन टोरंटो, हंसा वोरा जी, प्रकाश सूत्र जी नॉर्थ, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आप जान ही चुके होंगे कि आज के गीतों में एक वर्ड है जो बार बार, एक नहीं बल्कि दो वर्ड हैं बार बार आ रहे हैं. मैं हूँ, मैं हूँ. तो पहला गीत कौन सी फिल्म से था? मैं हूँ खुश रंग हीना का गाना था. और दूसरा था मैं हूँ प्रेम रोगी, प्रेम रोग का गाना था. और तीसरा गीत तीसरी मंजिल से सुना आपने, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा. एंड अब ये क्या कहते हैं, राम और श्याम से चुना इस गीत को. आइए सुनते हैं लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत जो आप तक पहुँचा रहे हैं कोकन नूडल्स वाले.

0: जल्दी से बता दीजिए कब सुना था ये गाना आपने लास्ट? मैंने अपने प्रोग्राम में आई थिंक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम प्ले किया है, उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया। दिनेश भगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड दिनेश पोपट जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, हंसा वोरा जी, अरुणा जी आप सब ने ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू, इसी तरह से साथ देते रहिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अरे भाई ये भी नहीं चलेगा।
1: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग ऑथेंटिक फ्लेवर्स टू योर टेबल एवरी डे। फाइंड जेमिन एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
0: और भी अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, अनारी नंबर 1 फिल्म से मैंने चुना है, 1999 की फिल्म थी, जसविंदर नरूला और अभिजीत भट्टाचार्य ने इस गीत को गाया। कौन सा गीत हो सकता है जिसमें मैं हूँ आई, मैं हूँ वर्ड है, कौन सा गीत है? सोचते रहिए तब तक मैं प्ले करती हूँ दिस। हाँ ये भी नहीं चल रही है, चलिए आगे बढ़ें। करना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल ब्रेक नहीं चल रही है, एंड लेट्स सी इफ आई कैन स्किप दिस, नो इट्स नॉट हैपनिंग। चलिए मैं बात करती रहूँगी जब तक नहीं चलता है कुछ, कभी कभी सिस्टम है ना, टेक्नोलॉजी ऐसे ही होता है, खराब हो जाती है तो।
2: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: संध्या जी आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया था। एंड पमी सिंह जी आप सलाव में सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम को भी और गीतों को भी। एंड आप कौन हैं? जयंती भाई थैंक यू, आपने कहा कभी कभी का गीत सुनवा दें या रोडी कपड़ा और मकान एंड मैं तेरी मोहब्बत में त्रिदेव का गीत, इन तीनों गीतों की आपने रिक्वेस्ट भेजी है। क्यों मीनू रबती शों मैनू राबती सॉन्ग, अच्छा ओके, चालबाज का गीत एंड मैं तेरा साहब ले बैठी, मैं तेरा शबाब ले बैठी, समथिंग लाइक दैट। वो आपने महेंद्र कपूर, मनू तेरा होना चाहिए, मनू तेरा शबाब ले बैठा, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इन गीतों की आपने फरमाइश भेजी है जय मुझ तक। तो लेट्स सी अगर हो सका तो मैं आपकी फरमाइश में इस लिस्ट में से एक गाना ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूँगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.62, Pakistani rupees 374.71, Sri Lankan rupees 440.53, Bangladeshi taka 165.13, Afghan afghanis 84.15.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: No, it's not playing again. And let's see. No, ye bhi nahi ja raha hai. Okay, so we will play this. गोल्ड का रेट मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ, गोल्ड का रेट है 106 pounds and 44 pence पर ग्राम और आप तक पहुँचाते हैं गोल्ड रेट पूजा स्वीट्स वाले। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ लें। मैं हूँ तेरा गीत,

फिल्म का नाम है महुआ और ये गीत मैं करती हूँ बड़े प्यार से अमरजीत आपके नाम, दिनेश पोपट जी थैंक यू आपका भी, तोशी जी सुन रही हैं आप और तोशी जी, मिसेस शेख आप सबके नाम।

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राइट, आपको बता दें कि आज कौन मैच में मैदान में उतरने वाले हैं। चंडीगढ़ में होने वाला है ये मैच, न्यू चंडीगढ़ में, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और मैच शुरू होगा 3 बजे।
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: Ramkrishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
7: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
6: So where do we find something like that now?
7: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
8: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
13: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
12: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
13: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
12: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
13: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
12: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
14: Fly more, pay less with Laika Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207 1320700 or visit laikafly.com. Laika Fly. Fly more, pay less.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
19: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जैमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
18: जैमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: अक्रॉस लंदन। This is Bali Brambat on Like a Gold.

फिल्म का नाम था गोपी। 1970 में आई थी ये फिल्म। दिलीप कुमार साहब और सायरा बानू ने इस फिल्म में काम किया था एंड इस फिल्म के भी सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे। कल्याण जी आनंद जी का था संगीत और मैं हूँ ना पे गीत आपने सुने, मैं हूँ। एंड इसी दौरान किशोर लाडवा जी आपने अभी अभी मैसेज भेजे

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में था पहला गीत कवाली नुमा गीत, द बर्निंग ट्रेन 1980 की फिल्म थी एंड गाना बहुत खूबसूरत, मतलब कवाली बहुत अच्छी थी। एंड दूसरा गीत मैंने चुना वो मैं नहीं उस फिल्म से, 1974 की फिल्म थी, आशा भोसले एंड नवीन निश्चल की आवाज़ें थी, नवीन निश्चल की आवाज़ थी मुझे पता नहीं या फिर गलत लिखा है यहाँ पर। एनीवे, सो आशा सचदेव इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, तो हमने उन्हें याद किया इन गीतों के ज़रिए और साथ ही साथ उनकी फिल्मों के और भी बारे में बता सकती हूँ मैं आपको, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया है, जितनी भी फिल्मों में काम किया कुछ एक अर्ली जो फिल्में थी उनमें एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया, उसके बाद फिर वो साइड पर ही काम करती रही हैं। असली नाम उनका है नफीसा सुल्तान और आज ही के दिन इन 1956 में उनका जन्म हुआ था एंड शी इज़ बेटर नोन एज आशा सचदेव एंड शी इज़ वर्कड ड्यूरिंग 1970s and 1980s। शी एक्टेड इन अ फ्यू अर्ली फिल्म एज ए लीड लेडी इंक्लूडिंग द स्पाई फिल्म एजेंट विनोद, पर अनफॉर्चुनेटली एजेंट विनोद का गीत मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ। एंड द थ्रिलर वो मैं नहीं जिसका गीत आपने अभी अभी सुना एंड लेटर शिफ्टेड टू सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एंड शी हैज़ अपियर्ड इन 90 फिल्म्स इन हर करियर एंड इज़ रिसिपियंट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रियतमा। प्रियतमा का एक गीत मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन और बहुत ज़्यादा गीत उनकी फिल्मों के नहीं हैं। एंड और आज अपना बर्थडे मना रही है, शी वॉज बॉर्न इन 1956 और शी इज़ द डॉटर ऑफ राजिया हु इज़ नोन एज रंजना एंड म्यूजिशियन अहमद अली खान आशिक हुसैन साहब की बेटी हैं। एंड आफ्टर हर पेरेंट्स डिवोर्स्ड एंड हर मदर री मैरिड शी अडॉप्टेड द स्टेज नेम आशा सचदेव। तो इनकी जिन जो फिल्मों में जिन इन्होंने काम किया जिन फिल्मों में उनमें नाम है बिंदिया और बंदूक, डबल क्रॉस, हिफाजत, हाथी के दांत एंड कश्मकश, एक नारी दो रूप, परिने। सो आई ट्राई कि अगर मुझे कोई गीत अच्छा सा मिला तो मैं ज़रूर शामिल कर दूंगी, लेकिन हमारी तरफ से आशा जी को बहुत बहुत बधाई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर इनके जरिए आज आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो काम तो बहुत आसान है। You can either go to the branch or SBI Yono app के जरिए अगर आप ट्रांसफर कराएंगे by end of June तक तो you can win up to £75 voucher every day when you send money over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: जी हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आज आपको कितने रुपए मिल सकते हैं एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 rupees and 25 paisas.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 0203963575 Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax. I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me or you.
12: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
14: Atif Aslam live in the UK.
13: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
14: Book your tickets now at AXS.
13: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio.
15: The voice that touches every soul.
16: Yeah,
15: Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
19: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
20: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
18: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
19: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
21: Feel the fun. Play Ojo.
22: 18 plus, gamble aware.
23: A reliable airline, excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget. Only at Travel in Style. 0208 954
24: 0077. London, good news. Aapka favorite iTech, up TRS Cash and Kerry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
25: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
26: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना और इस गीत को मैंने चुना था प्रियतमा फिल्म से और इस फिल्म की हीरोइन थी कौन आशा सचदेव हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. और अब जरा ये भी जान लीजिए किशोर कुमार के जितने भी फैंस हैं आपके लिए खुशखबरी, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी संजय एंड द 515 बैंड. इट्स टेकिंग प्लेस ऑन 19th जून को और कहाँ, प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइका गोल्ड रेडियो.
0: Leica Radio Network wishes you Eid Mubarak. Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: एक और गीत आशा सचदेव की ही फिल्म हिफाजत से.
3: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो.

0: आशा भोसले, सुरेश वाडकर और आर डी बर्मन साहब की आवाज़ें फिल्म फ्रॉम द फिल्म हिफाजत, और इस फिल्म में भी काम किया था आशा सचदेव ने। आप माफ़ी चाहती हूँ गीतों के साथ बात करने की, लेकिन बहुत सारे और भी दूसरे काम साथ साथ करने हैं। इन्होंने एजेंट विनोद में भी काम किया था, एक ही रास्ता इन 1977, एंड शी वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर हर रोल एज नीतू सिंह्स बेस्ट फ्रेंड इन प्रियतमा इन 1978। इसके अलावा मामा भांजा, लफंगा, महबूबा, सत्ते पे सत्ता, दुनिया मेरी जेब में, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। आशा सचदेव, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
0: और मैं लाइगा गोल पर आपको जल्दी से बता दूं, कुमार सानू जी का शो हो चुका है और आपने खूब इंजॉय भी किया, एंड मेला हो रहा है। लाइका रेडियो इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ अगस्त एट एबी पार्क, ऑल्सो द ब्रैडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑफ अगस्त एट सिटी पार्क एंड सेंटेनरी स्क्वायर में।
2: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
0: राइट, भी आपको साउथ हॉल ट्रेवल्स वालों की तरफ से भी एक मैसेज देते हैं, मेक द समर मेमोरेबल विद द साउथ हॉल ट्रेवल्स, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल देम ऑन 0208-574-8410।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. Leica Extra podcast update.
0: ओके, बता दें इस लेटेस्ट जो एपिसोड है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का, दीप राजा इज द होस्ट। इस डोमेस्टिक वायलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज, या फिर अगर किसी को हम ताने भी मारते हैं, टीज करते हैं, तो वो भी अब्यूज होता है। सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये एपिसोड। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
3: लाइका एक्स्ट्रा, ये है लाइका गोल्ड।
4: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yep, back a bit. Bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car, selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Chalo jaiye ek nava safar par, City Holidays. સિરીન હોલિડેઝ આપની પૂર્વ આફ્રિકાના સ્થળોની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપે છે. કંપાલા, નાઇરોબી, મુમ્બાસા, ઝાન્ઝીબાર અને દારેસલામ સાથે જિંજા અને મચ્છીસન ફોલ્સ.
10: બસ પેક કરો અને રિલેક્સ થઈ જાઓ,
9: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે. વધુ માહિતી માટે
10: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
9: 0116266481 પર. વધુ માહિતી માટે લોગ ઇન કરો serineholidays.co.uk પર.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
16: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Sheera, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
15: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
17: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. दैट्स 0208-907-2444.
18: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja talks to a panel about domestic violence.
19: We've seen repeatedly through our direct casework and our national helpline is that the police have an institutionalized culture of disbelief and dismissal towards victims of domestic abuse.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Across London. This is Bally Brambat on Leica Gold.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी हाँ, खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. अनुराधा जी का भी आज आर्टिस्ट ऑफ द वीक में मैंने जो गीत शामिल किया, मरते दम तक फिल्म का टाइटल ट्रैक था, साथ दिया था मोहम्मद अजीज ने. फिर आपने दो बातें प्यार भरी, कर लूँ आंखों आंखों में फिल्म का गीत था, 1972 की फिल्म. एंड मेरे साथी कहते हैं कि इतने प्यारे प्यारे गीत कहाँ से ढूंढती हैं, तो मैं यहीं से ढूंढती हूँ. और अगला गीत भी आपको ज़रूर पसंद आएगा, सुनिएगा.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: फिल्म देखी थी आपकी कसम, बहुत प्यारी फिल्म थी और ये गीत भी बहुत सुंदर है. आपकी कसम का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने. इस गीत में दो आवाज़ें आप सुनेंगे, किशोरदा एंड लता जी की. गाना किस पर पिक्चराइज हुआ था याद है आपको? राजेश खन्ना थे.

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: चलिए भी बुला रहे हैं तो हमारे भी जाने का वक्त है, और जाते जाते एक और गीत आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अब सैंडी शाह आ रहे हैं और फिर आएंगे अश्विनी, और दूसरी तरफ ड्राइव टाइम शो लेकर आ रहे हैं राजबदन। बाय बाय, टेक केयर।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Bali Brumbat on Gold Afternoons. Leica
3: Gold. You're listening to Bali Brumbat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1.

0: Prices perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.

0: New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Ashwini.
1: ढलती शाम ले चली है हमें सुहाने रात की ओर इवनिंग शो विद अश्विनी में. तैयार हो जाइए फॉर अ फैंटास्टिक मेलोडियस जर्नी. तीन अमेजिंग फीचर्स, यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गजल या कवाली. क्या सुनाएगी आज अश्विनी? पहले हो जाए तो बैक टू बैक गीत. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
2: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com. फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस विजिट travelhubworld.com. travelhubworld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: ट्रेवल हब
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: लाइका ईद मुबारक फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: जो लोग प्यार में गुम हो गए थे आ जाओ, वापिस आ जाओ, है ना, अब फिर से आप और हम करेंगे बातचीत। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी और आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। प्रोग्राम का आगाज हमने किया दो बड़े ही मेलोडियस म्यूजिकल ट्रैक्स के साथ में, उदित नारायण की आवाज में, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, आए हो मेरी जिंदगी में, आप सभी तो आए हैं हमारी जिंदगी में। एंड द सेकेंड वन इज किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में रामपुर का लक्ष्मण, गुम है किसी के प्यार में। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। पूछे भाई आप सबसे, कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना। हाँ, आज का मौसम थोड़ा सुहाना था, रात में रिमझिम रिमझिम वर्षा रानी भी आने वाली है तो ठंडक महसूस होने वाली है। कल फिर से 31 होगा, है ना, तो कल की तैयारी हम आज से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, हमारे जो प्यारे प्यारे पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो आके फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग लेट आएंगे उनके लिए सज़ा क्या है? क्या सज़ा देगी अश्विनी? अश्विनी उनको क्या सज़ा देने वाली है? कुछ नहीं यार, अपने हाथ की अच्छी अच्छी यम्मी यम्मी डिशेस बनाओ और यहाँ पे स्टूडियो भेज दो, ताकि फिर हमें भूख लग जाती ना कभी कभी। तो एनीवेज, ऑन दैट नोट, मैं आज अपने लिए सूप बना के लाई हूँ, है ना, एंड अदरक वाली चाय, दोनों भी लिक्विड्स हैं। 3 घंटे का शो है तो मैं खाना पीना कर लूँगी। असाइनमेंट क्या लगा? हाँ, अश्विनी गप्पे में लगा रही है और आज असाइनमेंट नहीं देगी। मैं आप सबको ले चलती हूँ आपके स्कूल डेज में। सो मैं जहाँ से आती हूँ, वहाँ पे मैं गई थी, मैं अकोला से आती हूँ, अकोला महाराष्ट्र, इट्स अ स्मॉल टाउन। वहाँ पे हमारी स्कूल थी होली क्रॉस कॉन्वेंट। ओके, सो इस स्कूल में हमारे यहाँ पे 3 हाउसेस थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अलग अलग हाउसेस में, ताकि कंपटीशन बनी रहे, कम्युनिटी वाली फीलिंग आए, यूनिटी वाली फीलिंग आए, साथ में कंपटीशन तो मतलब होना चाहिए ना, स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन तो आती है। सो आई यूज़ टू बी इन ग्रीन हाउस। अब हम लोग किस एज के हैं ना पूछें कृपया करके, लेकिन हमारा स्कूल का ग्रुप है और आज भी हम लोग उतनी ही शिद्दत से एक दूसरे से लड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू हाउस। सो ग्रीन, ब्लू, येलो, हमारे स्कूल में ये 3 हाउसेस हुआ करते थे और हमारा तो वही ग्रीन हाउस, तो ये हरियाली और ये रास्ता। एंड आई एम वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस टुडे, तो इसलिए मैंने आते से सैंडी को पूछ रही थी कैसी लग रही हूँ मैं, एंड ही वाज लाइक क्या हो गया आज तुझे। ओके, सो स्कूल डेज में आपके स्कूल में भी ऐसे वॉज दिस द वे जब स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाते थे अलग अलग ग्रुप में? बताइए जरा आपके स्कूल में क्या माहौल हुआ करता था।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling could get you up to 128 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also 1 gram gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
6: Latif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
7: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
10: Leica Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले Leica Gold और ऑनलाइन सुनो leicagold.com पे.
11: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ईद की बहुत सारी विशेज़, हैप्पी ईद टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग टुडे। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये ईद आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेके आए। देखिए, कोई भी फेस्टिवल हमारी लाइफ में जब आते हैं तो टुगेदरनेस होती है, हम सब एक दूसरे के साथ में आके सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से और आपकी दोस्त अश्विनी की तरफ से हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। मिला लेंगे घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 25 past 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। अगला गीत थोड़ा सा नटखट, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जुगनू फिल्म से।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क विशेस यू ईद मुबारक। द इवनिंग शो विद अश्विनी।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार।

0: ने प्यार हो गया।
1: यादों की बारात,
2: यादों की बारात।
3: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Every morning a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner. Like our radio.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है।
12: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लाई जाए रहे आप पवित्र यात्रा पर।
11: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर,
12: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
11: दर्शन पण अने यूरोप पण।
12: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
11: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
12: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स।
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Track of the hour sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम क्या हुआ है। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी, एंड धीरे धीरे करके हम शो के एंड की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। दो गीत और बाकी हैं, एंड फैंटास्टिक ट्रैक था ना जो अभी हमने सुना, लावा फिल्म से सुनाया था आप सभी को ये गीत। सभी लोग अपनी स्कूल की मेमोरीज मुझसे शेयर कर रहे हैं कि स्कूल में अलग अलग हाउसेस होते थे जिसमें बच्चों को बांट दिया जाता था। किसी ने बहुत ही प्यारी चीज़ कही, कहा कि हमारे यहाँ फ्रूट्स के नाम दिए गए थे, एंड उस हिसाब से ये था कि पपीता ग्रुप था, सीताफल ग्रुप था, एंड एप्पल ग्रुप था। Interesting, right? ये है
1: Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.57 Indian rupee, 373.99 Pakistani rupee, 441.75 Sri Lankan rupee, 164.81 Bangladeshi taka, 83.84 Afghani.
2: Leica.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.63 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Ashwini, brightening up your weeknights.
3: India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL match में राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच हुआ जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता by 47 runs.
3: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
0: क्या बात है, हम लोग इस आवर के एंड तक पहुंच भी जा रहे हैं, मतलब केवल दो गीत बाकी है ये घंटा खत्म होने में। दिस आवर यू नो देयर आर जस्ट टू मोर सॉन्ग्स लेफ्ट फॉर दिस वन। क्या बात है, इट्स 45 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम बोल दीजिए, क्वालिटी बोल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है। देसी ब्लिंग, अगर आपने दुबई ब्लिंग देखा होगा तो आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे ना एक तो दुबई, आई हैव नेवर बीन टू दुबई, बिल्कुल मैं चाहूँगी शायद नियर फ्यूचर में बुलावा आ जाएगा तब तो जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे। कहते ना हर जगह का बुलावा होता है, जब वो सिटी वो वास्तु जब आपको बुलाती है तो आपका बराबर नंबर लग जाता है। सो देसी ब्लिंग मैं देख रही थी और मैंने 3 दिन में चटखारे मार मार के वो एपिसोड्स जो हैं सारे देख लिए। तो जब कोई भी वेब सीरीज़ ख़त्म होती है तो एक तो सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ फाइनली मैंने जो है ये वेब सीरीज़ ख़त्म कर ली, और दुख भी होता है कि हाय राम अब नया क्या ढूंढना पड़ेगा फिर से। अच्छा, डेफिनेटली समझ में आता है रियल चीज़ें तो होंगी उस रियलिटी शो में, लेकिन कुछ शायद स्क्रिप्टेड भी होगा। अभी एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, हम लोग ह्यूमंस कैसे होते हैं ना, कितनी एंटरटेनमेंट लगती है हम लोगों को लाइफ में। सो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लाइका गोल्ड रेडियो पे सारे के सारे हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, इनफैक्ट हमारे जो सिस्टर स्टेशन है लाइका रेडियो, वहाँ के भी सारे प्रेजेंटर्स, हम सभी पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों का मनोरंजन कर सकें। उसके लिए जो है हम बहुत सारे फीचर्स लेके हाजिर हो जाते हैं और मेलोडीज ट्रैक्स, आहा ओहो क्या बात है, मज़ा आ जाता है। अगले आवर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इस आवर का फीचर जो है यादों की बारात, आप सबने सुना, बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये प्लेलिस्ट पसंद आती है, आई एम ग्लैड कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट आवर है इमोशन ऑफ द डे, दिस इज़ माई फेवरेट डे, वेंसडे मुझे बहुत अच्छा लगता है, है ना। सो दिस इज अ वंडरफुल वेंसडे, है ना, फील गुड वेंसडे. एक्चुअली वंडरफुल मेरे लिए, फील गुड हम सबके लिए, क्योंकि फील गुड गाना मैंने लाया है जो सुनाऊंगी आपको अगले आवर में.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
11: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
12: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: The Evening Show with Ashwini.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप भी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी. दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 13 मिनट्स पास्ट 8, 8:13, 27th of May, वेंसडे, यानी फील गुड वेंसडे. कौन सा फील गुड सॉन्ग है सुनाएंगे कुछ देर में. तो जब मैं आई थी शो के पहले एंड सैंडी के साथ में जब हमारी बैंटरिंग चल रही थी, तो आप लोगों ने सुना कि आज हमने और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है. तो इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे मुझे एंड हमारी पड़ोसन, जो हमारा पड़ोसी रेडियो है, हमारा सिस्टर स्टेशन है लाइका रेडियो की, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटर हैं, बड़ी खुश मिजाज पर्सनैलिटी है. खुश उनका नाम है. मैं खुश एक थेरेपिस्ट हैं और साथ में एक योगा इंस्ट्रक्टर, योगा पर्सनैलिटी एज वेल. और हम चार औरतों के बीच में, चार महिला और देवियों के बीच में हमारे साथ में दीप राजा बैठे थे, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को कंडक्ट किया. पॉडकास्ट का टॉपिक था मेंटल वेलनेस. हम चारों महिलाएं जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आती हैं, तो एक्टिंग बैकग्राउंड से होने की वजह से मेंटल वेलनेस में कितना माइंडफुल होना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं एज एन एक्टर, व्हाट डू वी गो विथ. सो अपने पॉडकास्ट में मैंने कहा है और जो आप लोग देखेंगे अभी, हाउ डू वी डील विथ रिजेक्शंस. आई ऑलवेज से कि मार्केटिंग वालों के बाद में सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं, तो वो आते हैं हम एक्टर्स को. बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और ये पेशेंस जो है डेवलप होता है फेलियर्स के कारण. फिर रिमेंबर मैंने लास्ट वीक आप सबसे पूछा था कि आपके फेलियर्स ने आपको क्या सिखाया. मेरे फेलियर ने मुझे सिखाया था पेशेंस, जो यूज़ आता है एक्टिंग की दुनिया में. 12 आवर्स का जब हमारा शिफ्ट होता है और सीन होते हैं 5 मिनट के 10 मिनट के, लेकिन पूरे 12 घंटे शिद्दत के साथ मेकअप एंड कॉस्ट्यूम पहन के हम बैठे रहते हैं. सो वही चीज़ है मेंटल वेलनेस, वल्नरेबिलिटी, कुछ इमोशन बोल के दिखाना, कुछ इमोशन छुपा के रखना, कैसे अपने आप को पहचानेंगे कि आप कौन हैं और कब ये ध्यान में आएगा कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं. ज़रूर देखिएगा, जब एपिसोड बाहर आएगा तब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे ही.
1: Leica Radio Network wishes you Eid Mubarak. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीज. सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून और आप जीत सकते हैं 75 पाउंड वाउचर के इस ड्रॉ में, जो होता है एवरीडे जब आप भेजते हैं 1000 पाउंड. ऑल्सो इस ड्रॉ में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन भी है, जो एवरी वीक ये ड्रॉ भी खुलेगा जब आप भेज रहे हैं 2000 पाउंड. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgage and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Leica Radio Network wishes you Eid Mubarak.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 29 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। गुड न्यूज़, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो रोज़ आपको इस सेगमेंट में मैं ऐसी कुछ गुड न्यूज़ सुनाती हूँ, विच इज़ गुड टू लिसन एंड गुड टू नो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो साइंटिस्ट इन जापान हैव क्रिएटेड अ प्लांट बेस्ड प्लास्टिक दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व्स इन सॉल्ट वाटर विद इन आवर्स विदाउट लीविंग एनी माइक्रो प्लास्टिक्स बिहाइंड। थैंकफुली ये जितनी जल्दी ये प्लांट बेस्ड प्लास्टिक पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, तो जो प्लास्टिक का प्रॉब्लम हो रहा है वो ओवरकम हो जाएगा। बहुत सारा प्लास्टिक जमा है ऐसे भी। द होल इन द एंटार्क्टिक ओजोन लेयर इज़ द स्मॉलेस्ट इट हैज़ बीन इन 5 years, कन्फर्मिंग अर्थ्स प्रोटेक्टिव शील्ड इज़ ऑन ट्रैक टू फुल रिकवरी। जितना लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, और लोग जब कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं कि भाई प्लास्टिक्स का यूज़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो प्लांट्स लगाएं, यू नो, जहाँ जहाँ भी प्लांटेशंस कर सकते हैं कर सकें, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स यूज़ करें, तो आई थिंक इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग इन नॉर्थ अमेरिका जस्ट ओपन इन कोलोराडो एंड बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स आर नाउ पुशिंग टू मेक वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग फंडिंग परमानेंट नेशन वाइड। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वाइल्ड लाइफ है, अभी क्रॉसिंग भी करनी है दो देशों के बीच की जो बाउंड्री है, इससे इसके बारे में क्या किया जाए, इस पर उपाय निकाला गया है। नॉर्वे अग्रीड देयर विल बी नो डीप सी माइनिंग इन आर्कटिक फॉर द नेक्स्ट 4 years विद अ होप दैट इवेंचुअली इट विल बी गुड। सो गुड न्यूज़ में आज इतनी गुड न्यूज़ है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, लैला मजनू की आवाज़ में, लैला मजनू की आवाज़ में नहीं, आवाज़ तो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, लैला मजनू इस फिल्म से। एक्चुअली लैला मजनू ये नाम पढ़ते पढ़ते मुझे बिल्कुल याद आया, ये फिल्म बहुत छोटी थी मैं, हमारे कॉलोनी में बड़ा सा पर्दा लगाया जाता था और उस पर ना ये सारी फिल्में दिखाई जाती थी जो 70s 80s की जो फिल्में हैं। सो ना जाने क्यों मैं जब भी इन फिल्मों के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो एकदम से ऐसा एक फ्लैश आता है मेरे आंखों के सामने। आई एम श्योर आपके साथ में भी ऐसे कुछ होता होगा ना, एपिसोडिक मेमोरी।
0: अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर फॉर द इवनिंग शो।

0: लाइका गोल्ड।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका एक्स्ट्रा में नया पॉडकास्ट पॉडकास्ट नंबर 17 आ चुका है, विच इज़ होस्टेड बाय हमारे अपने दीप राजा। और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हुई, मेंटल एंड हेल्थ ट्रॉमा ऑफ सर्वाइवर्स, वेयर एक्सेसिबल सपोर्ट इज़ अवेलेबल, और बहुत सारे और भी दूसरे मुद्दों पे यहाँ पे बात हुई है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट इज इमोशन ऑफ द डे, तो फील गुड वेंसडे में हाजिर है आप सबके लिए ये गीत।
0: The Evening Show with Ashwini. Emotion of the Day.

0: इमोशन ऑफ द डे. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja talks to a panel about domestic violence.
6: We've seen repeatedly through our direct casework and our national helpline is that the police have an institutionalized culture of disbelief and dismissal towards victims of domestic abuse.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
7: ये है लाइका गोल्ड.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: For £1 you'll get 128.66 Indian rupee, 374.09 Pakistani rupee, 443.56 Sri Lankan rupee, 164.86 Bangladeshi taka, 84.10 Afghani.
9: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
8: Gold is currently trading at £105.63 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
8: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 46 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. आई एम श्योर आप सभी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ. तो हमारी तरफ से फिर से एक बार ईद मुबारक. अच्छा जी, अब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जहां पुलिस भी सरप्राइज हो गई. तो एक भाई साहब जो है वो हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, काफ़ी एक्सट्रीम स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और पीछे से पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखी. अब ये भाई साहब जो थे किसी लिक्विड के इन्फ्लुएंस में थे और इनके साथ में डॉगी भी था. तो इन्होंने डॉगी को उठाकर ड्राइवर सीट पे बिठाई और खुद ने सीट चेंज की. ये सारा तामझाम होता तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी उनका आगत स्वागत करने के लिए. अब पुलिस सोच रहे हैं कि मतलब अगर ये भाई साहब जो हैं लिक्विड के इन्फ्लुएंस में भी है, फिर भी इनका दिमाग देखो कितना चल रहा है। बाद में तो उनके ऊपर जो केस बनना था वो तो बन गया, लेकिन ना कि पुलिस थाने की सारी पुलिस जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो गई कि कहाँ कहाँ इंसान दिमाग चला सकता है। और देखो ना उस डॉग को उठा के उन्होंने अपनी सीट पर बिठा दिया। भाई साहब ने कहते हैं हमारा डॉग जो है ये गाड़ी चला रहा था। सीरियसली हमने देखा है कई बार एशियन कंट्रीज़ में हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हुए दिखे हैं, क्योंकि उन्होंने चलाते हुए सीख लिया है दूसरों के साथ में। ऐसे और भी किस्से कहानी पे बात करेंगे कुछ देर में।
10: This is Laika. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me or you.
13: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
13: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
13: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
15: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
13: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
17: Minar Jewelers, agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par 181 Upper Tooting Road, ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
18: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
20: The Evening Show with Ashwini.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है। इट्स 24 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। अभी आपने आर्टिस्ट ऑफ द वीक अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आशिकी, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म, उसे फिल्म से सुनाया उनकी आवाज़ में और कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। नेक्स्ट इज टुडे इज फील गुड वेंसडे, तो फील गुड वेंसडे के लिए आपको सुना रही हूँ मैं एक गजल, बहुत ही प्यारी गजल है जगजीत सिंह की आवाज़ में।
0: गजल

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैं धीरे धीरे हम चल रहे हैं शो के आखिर की तरफ, तो बता दें आपको कि हमारी जो गोल्ड नाइट सर्विसेज हैं, ओवरनाइट सर्विस हैं, उसे ज़रूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s है, जो 90s के गीत बहुत पसंद कर सकते हैं उनके लिए ये एक हमारा रेडियो चैनल है, लाइका रेडियो पंजाबी। इसे भी आप सुन सकते हैं, लाइका गोल्ड 2। बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप, तो कितनी सारी सर्विसेज हैं लाइका मीडिया की। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मनोरंजन में हम हमेशा उपस्थित रहें, एंड समटाइम्स आई जस्ट लव माई हिंदी, उपस्थित रहे, है ना, बड़ी ही शुद्ध शुद्ध हिंदी निकल आती है मुझसे। तो मिड ऑफ द वीक आ गए, अब बस दो दिन बचे हैं वीकेंड के लिए। मौसम सुहाना हो रहा है या मौसम हमें एक्चुअली बॉदर कर रहा है? ये 30s वाले टेम्परेचर जो है, बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार फाइनली हमने हमारे यहाँ की बेडशीट्स बाहर धूप में सुखा दिए। बिल्कुल। सो जैसा भी मौसम हो, आपके इस मौसम को और सुहाना बनाता है आपका अपना लाइका गोल्ड रेडियो। मेरा नाम है अश्विनी। मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। और आप सभी जानते हैं कि फ्राइडे को हम हमेशा बहुत स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि आरजे अश्विनी उस दिन बन जाती है डीजे अश्विनी। आप लोग खा पी के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी होती है, और पूरा डांस नंबर्स हम लोग प्ले करते हैं पूरे 3 आवर्स में, और आप लोगों को ये शो बहुत पसंद आता है। सो बाकी 4 दिन कोशिश होती है कि थोड़े से शांत गीत, थोड़े से कम बीट्स वाले, क्योंकि फ्राइडे आप सबका बड़ा स्पेशल और फेवरेट डे बन गया है अभी। सो बाकी 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत सारी और दूसरी वेरिएशन मैं लेके आ जाती हूँ। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड डिम्पल जी कितनी गॉर्जियस दिखी है इस गीत में, आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। एतबार फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राज बब्बर भी थे ना इसमें, इस गीत में, सुरेश ओबेरॉय, एम आई गेटिंग कन्फ्यूज? अगर आपको याद है कि इस गीत में कौन कौन था, जरा लिख के भेजिए ना, हम लोग बाकी हमारे लिसनर्स को भी बताएंगे।
0: ये है लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
5: Dil diya galla karange na.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
0: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
8: For £1, you'll get 128.65 Indian rupee, 374.07 Pakistani rupee, 441.6 Sri Lankan rupee, 164.84 Bangladeshi taka, 83.88 Afghani.
9: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
8: Gold is currently trading at £105.63 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
8: टिक टिक करती हुई घड़ी कह रही है अश्विनी, एक बार जरा टाइम चेक हो जाए. इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी. 3 अमेजिंग फीचर्स लेके हाजिर हो जाते हैं आपके लिए. यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गज़ल या कवाली. आप सभी ने गज़ल बहुत पसंद की. किसी ने कहा कि भाई हमने तो पहली बार सुनी ये गज़ल तेरा चेहरा और बड़ी खूबसूरत लगी, है ना. तो जो भी आपके आसपास के खूबसूरत चेहरे हैं, सबसे पहले तो खूबसूरत चेहरा आप खुद हैं, तो खुद के लिए वो डेडिकेट कर दो और फिर बाकी लोगों के लिए. हमेशा की तरह यही कहूँगी कि लाइफ बहुत सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. प्यार दो, प्यार लो, प्यार सबसे खूबसूरत चीज़ है. और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगती है, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी पावर नहीं यूज़ करता होगा. प्यार दो, प्यार लो, इस लाइन पे हमेशा मैं टिकी रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है. ऑन दैट नोट आई हैव टू से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. मिलूंगी कल आप सबसे. बाय बाय.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क विशेस यू ईद मुबारक.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन।
9: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
10: नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574-8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
8: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
8: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait. How can I help?
8: You can help me celebrate. I won.
9: Feel the fun. Play Ojo.
10: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
11: Like a gold par har raat ki yehi reet. Purane magar sada bahar geet.

ताली तक धीमी तक ताली तक जमी तक धला अंग तक जग तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के ताली झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को गुदारी दामु तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तक झम तारी जग तारी जाने

से नहीं हटूंगा मैं, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुर्ती को छोड़ू।

0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।